उदयन तो बिडावे तिसनी ने ना हेने ने ना ने ना अरे रे समने ने ना अरे क्वति वाले बाबी गलेन अरव एम बलिव निम सियो दे ना या वो रशद दाई तवासा होन या वो तो न तो दाई यह दबेन दे आया तो न तो शुभोत या वो गलेन अरव है शस आहोना हेने उद्धयोन दाई ना इतने सरीव दाई था तिब दाई ने तरेनी दाई था आतिब दी मरहनी तरेनी चल दाई था तिब दाते ना दाई था आति दी में एम बलिब निम्सियो दी एम बलिब दी तित अरे मिड्डा अफरहा गलेन अरव ररे समने हेनिन अम्से हो आदि दाने आदे तून इन इन सिरे का तित्ते न ते दाई अल्फाद ले इतने ते दाई कक रिसने कक तवासने उम्बतियो एम बलिब दिया नेत

उदयन तो बिडावे तिसनी ने ना हेने ने ना ने ना अरे रे समने ने ना अरे क्वति वाले बाबी गलेन अरव एम बलिव निम सियोदे ना याबो रशद दाई तवासा होन याबो तो न तो दाई यह दबेन दी आया तो न तो शुभोत याबो गलेन अरव है शस आहोना हेने उद्धयोन दाई ना इतने सरीव दाई था तिब दाई ने तरेनी दाई था आतिब दी मरहनी तरेनी शल्ला दाई था तिब दाते ना दाई था आति दी में एम बलिब निम्सियो दी एम बलिब दी तित अरे मिड्डा अफरहा गलेन अरव ररे समने हेनिन अम्से हो आदि दाने अधे तून इन इन सिरे का तित्ते न ते दाई अल्फाद ले अधने ते दाई कक रिसने कक तवासने उम्बतियो एम बलिब दिया ने अधे

धन तो बिड़ावी अरे ए ना ओकना तो न तुवे दुरनी ने ना तिम बथ्यो एम बलि दिया नियत आओ उन उधई ही दाबदाय नो इन निसरिक तवामे नो तवाए नो इन निसरिक एक न अरे कतीनक अरे कतीनक इम बरे रशद बरा रशद आको रशद एक न दाए ब्रंशी दो दाई था आती इतरशिद ना अमाग रशी दो अमाग था आती इतरशिद ना तो न तो दाई थिन निसरी ओकना बेत तो ना ती दाई इन निसरिक ते न ते दाई सोया ना ते न ते दाई रहसा न दिया ओकना नेत आओ ऊतक का गिंदिया इत्था बै थी तो दूर अरे हुआ ओरिया हुआ वह बिन तेरा बंदे इंदी तो दूर अरे तवास्ते नी आती सो की ना वह बिन रिस्ते नी आया इन बरे कस्से दाए ती सो की ना तो दूर अरे बी बरी एक तोली हाफी बिथाई एक ओरिया बी कोना एक इंदोर ऊ सिमाए कुड़ी नी तोले रिस्ते नी आया ना अरे ले तवाया ना फगर फगर आ बके ना दाई था आती दाया ना ए दाई ओ धई वविन कायक न हमोई साना इदादिस कायक न रिशिद ना उत्था आती यर सोतनी ओ सो दाई उन ऊ सुंबरू उगनी इबदायती लेत लेत बितकायत एवन नो हैया केतित है सकेन बेत तुनाती दा हेनिन दाई न यर निसरिव यार अरेना अरित अरितेना बराक नहन धयो नानो अको बेत तुनाती दा दाई न निसरिव ओकना दाई न तवायाना यारेक तेन अति दाई ओसदिक एकतियक सोयाना हमोईसा एकतियक सोयाना थदारित एकतियक सोयाना ओसदिक एकतियक सोयाना अरे यार एकना बा मागना गले करवे ददीना गले करव इब्तिकेकना ओरे रुआ तित्तेन एम्बते तिदाईत इब्तिकेकना तवायाना दीतित सोतनी आया तो और तिकतियक उसानो खमोईसी तिंदी आया और इकतियक तुकातोक दाए बगनो कोई दिया तिंदी आया उम्बतु कस्तु यार ही दद्दे तवाईत ही ददाईत इम्बते कस्ते सकेनेक यार अकन लेते रशिद नोकना असे है सकेनो तो बुड़ावी उधायून इन दाई न निसरी वोकना तू न तु दाई दीम दाई तिकतियो बे नोदोर तिशबोबी तुशाबू बुआ आन थदरे हुआ आन फगरंदी हुआ ओरिया हुआ तित्तान एम्बता यार एब तवाईत इन यार उबोईब सकेनो लहित लहित बितकायत यार गरोयो इराशिद ना बरेोक न दाई नाद दाएन वरी नेदा नाद दाएन बेत तुनाती दाई इन हिनिन असासक धैयों नेहरिव असासक उने हरुए उन उधई असासक दाई दाई थाय आती दाई ने तो ने हरु इन आरान व इन सिरकायान इन बरा रशदोनु रशद दाई तवानेक शुभोबी ऊतक सूर्य दबाब कक दिया फेराय दो बनु इक्तिहन रे उबार शाद तवामीन मल है तरमु मनु इक्तिहन नतवा कान हत आये दिया मल है उत मल है सोकिन्न तरमुमा हुआ मल ही हुआ इन बरे सोकिन्ना रशद उकना गार रे वंके आके इन सिरका हुआ यार आकना रशद बेत तुनाती दाय हिनन इन आरान दाय दाई ने थरेनी दाई थाय आती दाय ने बका लहित लहित बितकाय हिनन है ने मादित अमसे बरुक उकना उक तिकते ना आन इन इन सिरका दिशबोवी ने भवाते कतेक भवा बहवी ना भवा उकना हवासा तेदने यारे बर हर दीते हवा हवा नदीना थवा उदाई भवासा ना भवा बहवी ना अरे उकना बागुस्सा ना भवा उकना तो नंबर तो दाए बे तिशबुप तेरने निजाम दे तीन हमसे ना निजाम तिंदिये और मर्दोर फितर आया मर्दोर महस आया मर्दोर देर आया तिंदी आया तुम अरे तो उकना तो दाए रिसेतित का तोन आया तुम बतो तोन हमसे आया दीतित तो उकना हमसे तिनी हुए तुम्हारे रही तुए तिनी हुआया तू ना ना ना तो तिंदिये उकना तुबनिया तो बरी तू उन उबाशर हुआ अदे हुआ दाई अक्ति अकें काबित वे तो ना तीदा इत्था या तिदाई हिनिन निसरी वोकना उन दाप इन हिनिन गाना उन्ने तो तुबड़ावे ती उगनो ही पीदी ने ते है ना ना तो तिंदिये उन उन्ने सिरिक अना और बर्रा भावाया हलान हलान का एन बक दिफा और दिफा दी तित का बर्रा का सुके फारा दी मा सुके कित फेरा ओदोर हवा अरवाब इकतिये हवा स्तिनिया हवा अरे अरवाब भी काए दूर दिवा तिंदी आया जमन एनो राहते कहा तिंदी आया अरे अना और दिफात मल्ल मर दूर आ तिंदी आया हवा ओकना यार इदाय हुआ दाय हवा हुआ उम्बरो हिस्तिनी थवास्तिनी आया सूर उन धायून दमन बेन आई
maashallaahe imandaraahinawo oon wawli ihiino been odor daayitaa aatiib ihiin dhahase henin dhahoynihaye wudamaan usuure bakaad erib wudahe mindar eyaanay tumadiina eyaano taya tusuure dhakaat erib bettunaatiida nazamteene toona zamanekinawo bhawaawwa teerawo imbare nizaam daytid ine toona umbatu arriwookna tadriise katiyek allamteni aya teena tidaayid tisookiinaaya teena tidaayid ristini aya henin kastuutun sariweetukna daayib badaayin daayit hayaatib badaayin niyaadib imbalib niyadookna bettunaatiida shiboobna yariyokna day shiboobna yarek ikna nakumanaayaana nisirik uukna unakumana henin nisariwi naagwadiibu tednek nisirik uukna un uudhay orey fira sigiya baksaka eedn oor uukna hirere inu bak uguruma shiishtiniyayd ana ooru umbaruk daaywaatindiya idaayiftindiyaaya are uknaayuk inakumanaaye kasiistiniyaaya naanaatutindiyek malla udhayida nakumanaayine kaabu udhayida ishiboobe kaabu udhayida masiguwa daayinawa tawaayine kaabu henin bettunaatiida in yar imbaliibtudayneyade yaramba ishibubna ba iirshid nahoon lahit ba itfeyek nahoon daayit haatib ba daayin uud hareerheeno maashallah uor naa abunaanaay oor keeke maashallaahe daay ooru daayit tarbiyaay rabbiaaba daay soysooyaaba ba iyaadna miyaadib henin imbaliibniyadokna bettunaatiidaay shiboobna ugaroyokna day shiboobna yareyokna day shiboobna udayida shiboobna ushawiida shiboobna imbate kaste heninni sariweetokna naato ako uttunaatiidaay udhayuun tubidhawi iheeni miinika daayib daayineed areeni bettunaatiida shalla daayib daateena shalla daayit hayaatib daateena eene nistirahoknane